0: हेलो हेलो क्या किया
1: हेलो अभी अमला तोरू अभी अमा ये अभी अमला तोरू अभी नहीं मैं सोकाले
0: अभी
1: अमोरू एबा निकबा वो मई एबा निकबा वो एबा वाकबा वो अभी अमा ये लोग पे अभी अमोरू यूज़ शुपिटी अभी अमोरू एबा वाकबा वो मई ले अभी अमोरू एडिडे abi omo run edide abi amaye lo npe yen ba ni tu won sile
0: ninu
1: igbe ko ti won oluwa tu won sile ma yo ji ya imodi iya imodi omo yo gbodo je iya imodi awon omo yo gbodo je abi amo run o
0: abi amo run
1: o
0: abi amo
1: run o abi